0: कौन हैं ये लोग और कहां से आए हैं?
1: इनके झंडों को तो देखो, लगता है कूफे के अतराफ के मुख्तलिफ कबीले हैं। क्या वजह है कि ये लोग इस तरह इकट्ठा हो गए?
0: इसकी एक ही वजह हो सकती है, फरजंदे रसूल खुदा की बयात। चलो चले।
2: ये लुटेरे हैं, हसन इब्ने अली के नाम पर लूट रहे थे।
3: लानत हो इन पर, लानत हो, फांसी पे लटका देना चाहिए।
4: इन्हें दारुल हुकूमत ले जाओ।
5: साले अहमद।
2: हो रशीद है।
5: खुश आमदी।
6: खुश आमदी
2: रशीद। तुम यहाँ कैसे?
5: लंबी दास्तान है।
2: कूफा कब आए?
5: आज ही सुबह।
1: हारिस कहाँ है?
5: यही है, वो देखो सामने, वो आ रहा है।
3: इधर क्या हो रहा है?
7: वो देखो अहमद और साले।
1: सलाम बाबा।
7: अलैकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? वाह बेटा।
8: देख रहे हो हर्ब?
7: देख रहा हूँ।
1: आओ, कैसे हो हर्ब?
2: अब्बा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
7: बताता हूँ, तफसीली बात है।
1: रशीद जिंदान क्या हुआ?
5: वो मुआविया के हवाले कर दिया।
1: हमारे बच्चों के साथ क्या किया बाबा? वो लोग कहाँ हैं?
7: बेटा घबराने की बात नहीं, वो लोग बिल्कुल महफूज हैं। मैंने उन्हें देहात भेज दिया है।
9: ये लोग कौन हैं?
1: लुटेरे हैं, हसन इब्ने अली के नाम पर लूटते हैं, गारतगिरी करते हैं।
7: खुदा लानत करे इन पर। इब्ने अब्बास को बताना होगा, ये लोग जगह जगह पाए जाते हैं। इससे पहले भी मैंने इब्ने अब्बास को इनके बारे में बता दिया था।
1: अच्छा, गुलाम फरोश ने हर्ब को पहचान लिया, फिर कैसे आजाद हुआ? और ये तो यहाँ बैठा है।
4: ठहरो भाई, बताता हूँ। जल्दी किस बात की है?
7: ये हमेशा जल्दी करता है।
1: ये देखो हम रियाज से कितनी शबाहत रखता है।
7: क्या मतलब? कौन?
10: अहमद।
4: सुनो, रशीद ने हमें हर्ब की गिरफ्तारी का बताया और फिर जासूस के उनवान से माविया के दरबार में ले गया।
1: लिहाजा हम माविया के दो जासूसों से मतलब रखते हैं।
2: मोहम्मद इधर आओ, उस आदमी को देखो।
4: कौन सा आदमी?
2: वो जो अभी भी बैठा है।
1: जो अभी अभी बैठा है,
4: कौन है ये?
2: वो जासूसों का सरदार है और मैं उसके गुरुओं में हूं। तुम उसे जानते हो?
4: हमारा सरबरा दूसरा है।
7: तुम लोग क्या कर रहे हो?
2: वो आदमी मुआविया के जासूसों का सरदार है। हाँ हाँ, वही जो बैठा है।
3: इब्न अब्बास को बता देना चाहिए। जाओ हर्ब, इब्न अब्बास को बताओ। हाँ जाता हूँ।

0: उसकी बातचीत खत्म हो गई है, वो जा रहा है।
1: वो निकल जाएगा, जाओ अहमद उसे पकड़ कर ले आओ।
2: हर तरफ से उस पर नजर रखो।
3: चलते हैं।
2: मुझे बेखबर न छोड़ना।

0: ए भाई, देर या सवेर हम दोनों को एक दस्तखान पे देखेंगे।
1: ना तो अमीर उल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने खुदा के बंदों से धोखा किया और ना ही उनके फर्जंद ऐसा काम करेंगे।
0: भाई तुम तो अवाम में से हो, हुकूमत के राज़ो न्याज़ की तुम्हें क्या खबर? हुकूमत तो मक्कारी और फरेब से चलती है।
1: भाई माविया और हमारे आस की हुकूमत धोखेबाजी से चलती है, ना कि फर्जंद रसूल की हुकूमत।
0: क्या पता, शाम वालों से पूछो। हसन इब्न अली का खत मस्जिद दमिश्क के मिंबर पर रखा है। शाम में सभी लोग हसन इब्न अली और माविया इब्न अबी सुफयान की दोस्ती से आगाह हैं।
2: भाई ये झूठ है, कौन इन बातों को मानेगा?
3: दमिश्क में सब मानते हैं।
4: कौन? हाँ
2: कैस, वो देखो वो सबको भड़काता है। किसी दमिश्क से आने वाले से पूछो, मालूम हो जाएगा।
1: मुझसे पूछो कि माविया से जंग क्यों नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ। जरूर कोई खुफिया तौर पे वादा हुआ है जिसकी वजह से जंग नहीं हो रही है। तुमसे उम्मीद नहीं है इसलिए कि तुम्हारा बाप खवारिज में था और नहरवान में हलाक हो गया।
5: अबे तेरा भाई बनी हाशिम का कुत्ता नहीं था, फिर भी हमारे बाप को बुरा भला कहता है। अभी बताता हूँ तुझे।
6: सुनो, लड़ाई लगा कर चल दिए, रुक के नहीं देखोगे?
0: ये लोग पागल हैं, आपस में बदतमीजी और मुजादला करते हैं।
7: किसी ने उनके दरमियान फितना खड़ा कर दिया होगा।
6: शायद माविया के जासूस भड़काना चाहते होंगे।
0: मैं नहीं जानता, मुझे जाने दो।
7: अब तुम जाके दूसरों को भी भड़काना चाहते हो?
6: झूठी बातें करके।
8: पिसरे रसूल खुदा पर झूठा इल्जाम।
9: हसन इब्न अली और मुआविया के सुलहनामे के बारे में झूठी बातें करो और लोगों को लड़वाओ।
0: बस बहुत हो गया भाई, अब कितना लड़ोगे तुम लोग? तुम पे लड़ना, तुमसे खुदा समझे, तुम्हारी गलती।
10: ए लोगों जान लो, अहम ऐलान कि अभी दारुल खिलाफा के सामने शाम की जालिम हुकूमत के जासूस को, जो कि मोमिनीन के दरमियान तफरखे बाजी के लिए भेजा गया था और लोगों के दरमियान फितना फसाद और जुदाई डाल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है। ए लोगों जान लो, अहम ऐलान, जान लो।
2: अभी आया,
10: अभी दारुल खिलाफा के सामने।
11: आम्र, आम्र, हाँ मैं इधर हूँ। आम्र, वो लोग उस जासूस को कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? शहर में मनादी करने वाला लोगों को बुला रहा है।
10: अबा मोहम्मद के हुक्म से फांसी दी जा रही है।
1: माविया ने बहुत से जासूस भेज दिए हैं।
3: मैंने सोचा भी नहीं था कि हसन इब्न अली इस कदर जुर्रत से काम लेंगे कि माविया के जासूसों को भी जल्लाद के हवाले करते।
7: जैसे ही ये खबर माविया तक पहुंचेगी, जंग की आग भड़क उठेगी।

0: ये वही है जो हम चाहते हैं।
1: मगर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जब जल्लाद की तलवार हरकत में आती है तो इतनी जल्दी नहीं रुकती, और मैं नहीं जानता इसके बाद किसकी बारी है।
2: यकीन नहीं आ रहा?
0: उन दोनों की बारी है, फिक्र ना करो, अब उनकी गर्दनों पे चलेंगी जल्लाद की तीर। देखो अशस कैसे घबराए हुए हैं। अहमद मोहम्मद ले आओ उन्हें।

देखो हमारा सरबरा वो है, वो देखो लंबे खत का जो दरवाजे के सामने से गुजर के बाहर जा रहा है, जल्दी देखो। हाँ वही लंबा वाला, जल्दी करे वरना भाग जाएगा।

0: देखा देखा आज क्या हुआ, उसकी गर्दन उड़ा दी गई।
1: मैं उसको जानता हूं, दमिश्क में उसे देखा था।
0: किसी से कुछ ना कहना, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं?
2: नहीं।
0: ठीक है, लाओ अमीर का खत दो। अब तुम जाओ आराम करो और शहर में दिखाई ना देना। मुमकिन है दमिश्क में किसी ने देखा हो, वरना हमारा अंजाम भी तलवार और जल्लाद है। क्या मुसीबत है, कैसा अजीब वक्त आ गया है। इस वक्त मेरे औकात बहुत तलख हैं।
2: सिर्फ एक जुमला लिखा।
0: क्या लिखा है?
2: लिखा है सिर्फ एक जुमला, या तो खुद को मार डालो या फिर खवारिज को हसन इब्ने अली के कत्ल पर आमादा करो।
0: क्या मतलब? खवारिज खुद हमारे खून के प्यासे हैं, हम किस तरह उन्हें हसन इब्ने अली के कत्ल पर आमादा करें? तुमने नहीं देखा शिमर यहां हमारी तरफ कैसे देख रहा था? निगाहे निगाह में कह रहा था कि अब तुम्हारी बारी है, उन्हें आमादा करें कैसे? आम्र, हालात अच्छे नहीं हैं। हसन इब्ने अली के असहाब दुश्मन समझते हैं, खवारिज हमारे खून के प्यासे हैं, और मुआविया हमें खुदकुशी की दावत देता है। वो कूफे के हालात का जिम्मेदार हमें समझते हैं। उनके ख्याल में अबा मोहम्मद की बैत के लिए लोगों को हमने जमा किया।
3: कुछ लोग आए हैं, कहते हैं जरूरी पैगाम है।
0: कुछ लोग किसका पैगाम लाए हैं?
3: नहीं बता रहे।
0: उनसे कह दो मैं अंदरून खाना नहीं हूं।
3: मगर वो इसरार कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं।
0: उन्हें वापस लौटा दो।
3: वापस जाए।
4: दरवाजा खोलो।
1: अहम पैगाम देना चाहता हूं।
0: तुम कौन हो? तुम चले जाओ।
1: हम मरवान और मुगैरा के आदमी हैं। कुछ देर पहले हमारे एक बंदे को कत्ल कर दिया गया है।
0: यहाँ क्या कर रहे हो और चाहते क्या हो?
3: मुगैरा ने कहा है कि जब मजबूर हो जाओ तो तुम्हारी तरफ रुजू करें। उसने कहा कि तुम लोग अमीरुल मोमिनीन माविया के वफादारों में से हो।
0: आहिस्ता, देख नहीं रहे कि हालात कैसे हैं? क्या तुम वाकयन मुगैरा के जासूस हो?
5: हाँ, और हम खतरे में हैं, इसीलिए तुम्हारे पास पनाह लेने आए हैं।
0: खतरे में हो तो यहां क्या लेने आए हो? फौरन चले जाओ, हमारे हालात भी तुमसे अच्छे नहीं है।
5: सुनो, तुम लोग हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हम पकड़े गए, इससे पहले कि हमारी गर्दनें उड़ाए जाएं, हम तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता देंगे।
0: हमारे बारे में तुम क्या जानते हो?
5: हम जानते हैं कि तुम्हारा राबिता दमिश्क के साथ है, और तुमने कई दफा कासिद भेजे हैं, और आज भी एक कासिद तुम्हारे लिए अमीर मुआविया इब्ने अबू सुफयान का खत लाया है।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
3: हमारा काम ही यही है, खबर इकट्ठा करते हैं, हत्ता अमीर के दोस्तों की भी। और हाँ, कूफे में सब लोग जानते हैं कि तुम अमीर के तरफदारों में से हो। इस खतरे में अगर हमारी मदद नहीं करोगे और हम गिरफ्तार हो गए तो बेशक हम सब कुछ बता देंगे।
0: तुम्हें कैसा खतरा?
5: हम चार आदमी थे जिन्होंने जासूसों की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली है। जिसकी आज गर्दन उड़ाई गई है वो हम में से एक था।
0: तो तुम डर रहे हो कहीं तुम्हारा नाम फाश ना हो जाए। हमसे क्या चाहते हो?
3: सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरे, बस।
0: ठीक है, गुलाम को कह दूंगा।
5: वैसे कासिद अमीर मुआविया की तरफ से क्या पैगाम लाया है?
0: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? तुम किस लिए जानना चाहते हो?
3: ना डरो, तुम्हें हम पर एतमाद करना पड़ेगा।
5: हम सब का फरमान दमिश्की से मिलता है।
3: हमें जानना चाहिए कि अमीर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है, और हमें क्या करना चाहिए।
5: बताओ, बोलो, डरते क्यों हो?
0: उसने कहा है कि खवारिज को अबा मोहम्मद के कत्ल पर उकसाया जाए। خوارج ہمارے اور معاویہ

0: के दुश्मन हैं, ये नामुमकिन बात है। अमीर यहां से बेखबर हैं और नहीं जानते कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं।
1: खवारिज जब मोहम्मद को कत्ल करें, ये काम हम खुद क्यों ना कर लें?
0: दीवाने हो क्या? हम सबको मरवाना चाहते हो?
2: अगर तुम राजी हो तो ये काम हम करते हैं।
0: नहीं नहीं, हम कभी भी राजी नहीं हो सकते।
1: अगर अबा मोहम्मद कत्ल कर दिए जाए तो तुम भी महफूज हो और हमारी जान भी महफूज है
2: और अमीर की इताअत भी होगी।
0: तुम कहते हो मुमकिन है?
1: मुमकिन है।
0: खतरनाक नहीं है?
2: इस सूरत हाल से ज्यादा खतरनाक नहीं।
3: तुम सब गवाह हो कि हमने उसे मुस्तकिल चाहा। चाहते हैं कि वो हमें जंग का हुक्म दे और वो लश्कर हमारी मदद को भेजे और वो खुद हम सबका रहबर बनकर उम्मुल फसाद के खात्मे के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस दरख्वास्त का क्या नतीजा हुआ? अबा मोहम्मद हर रोज उसे छूट देते रहे और माविया दिन ब दिन अपना लश्कर इकट्ठा करता रहा और अबा मोहम्मद ने अपना वक्त माविया खबीस को खत लिखने में सर्फ किया। लेकिन उस खबीस ने हमारी सरजमीन पर जासूस छोड़ दिए जिसका एक नमूना हम सब ने अपनी आंखों से देखा।
4: हम जानना चाहते हैं कि हम कब तक सब्र करें?
3: अगर हम लोग कब तक खामोश रहें?
2: ये कासिदों का आना जाना और उनके आए दिन के चक्कर कब खत्म होंगे?
4: आज भी दमिश्क से कासिद आया था।
3: अबा मोहम्मद आखिर किस चीज के मुंतजर हैं?
2: वो इस वक्त के मुंतजर हैं कि माविया इब्ने अबी सुफयान अपने लश्कर के साथ हम पर टूट पड़े और अपनी सिपाह के साथ हमारे घर बार मालो मवेशी और मुल्क मिल्कियत को खाक में मिला दे।
3: हम पूछते हैं कि क्या वो वक्त नहीं आया कि लश्कर की सरदारी का इंतखाब किया जाए और दमिश्क की सरहद पर जाने का हुक्म दे दिया जाए?
4: आज सब कुछ वाज़े हो जाना चाहिए।
5: इब्ने ज़िलजोशन, आज सब पे जिम्मेदारी वाज़े हो गई है। हम लोगों पर, तुम पर, मुआविया पर, अली के चाहने वालों पर, कबाइल पर, लोगों पर और उनके लिए के जो जंग के तलबगार थे और जो सुलह के नारे लगाते थे। इमाम ने फौज तश्कील देने का हुक्म दे दिया है और उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को उसका सिपह सालार करार दिया है। अगर वो मारा जाए तो सईद इब्ने गैस, और अगर ये शहीद हो जाए तो मैं गैस इब्ने साद सिपह सालार हूंगा।
6: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
4: हम लोग भी तो यही चाह रहे थे।
7: ये तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ बल्कि रसूल खुदा के बेटे की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और जो होना था वो हो गया। अबा मोहम्मद ने माविया को इताअत की दावत दी, वही खत जिसकी वजह से तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हंगामा कर दिया, और आज इसका जवाब आया है कि माविया ने इताअत से इनकार कर दिया है। फर्जंद रसूल ने अपनी हुज्जत तमाम कर ली और अब बगावत को कुचलने का वक्त आ गया। अब तुम हो और ये वजीफा, तुम हो और ये जंग, तुमने अबू सुफियान के बेटे के फितने को नाबूद करना है। चलो उठा लो अपनी तलवारें, जबाने बंद और मुंह खोल के चलो मैदान जंग में आ जाओ और दुश्मन पे साबित कर दें कि हमारे बाजू और जबान एक हैं।
8: Ha ha ha!

0: तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कल तुम्हें देखा था, लेकिन नजदीक होने की हिम्मत ना पड़ी। क्या किया है तुमने?
1: कुछ नहीं कर सका, मैं इस शहर में नया हूं। कौन है ये लोग? ये लोग मुझे रास्ते में मिले थे और ये अबा मोहम्मद के दोस्तों के साथ मुलाक होने का इरादा रखते हैं।
0: बहुत अच्छा, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कल नहीं, कल के बाद नमाज सुबह के वक्त यहीं रहोगे। एक मुहिम इत्तेफाक होगा।
1: क्या मतलब?
0: अत पूछो, बस जब भी इत्तेफाक हो तो फरियाद करो, खवारिज, ये खवारिज का काम है। बस तुमने यही कहना है।
1: ठहरो, कहां ढूंढूंगा तुम्हें?
0: लाजिम नहीं कि तुम मुझे ढूंढो, वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद मिल लूंगा।

0: मक्कारी के साथ एक साजिश करीब में है।
1: अब हमें क्या करना चाहिए इब्ने अब्बास? क्या हम हसन इब्ने अली से जाके कहें कि वो सुबह की नमाज में ना आए?
0: गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है वो कबूल नहीं करेंगे।
2: फिर क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें ताकि वो फर्जंदे रसूल खुदा को कत्ल कर डालें?
0: रेंदे हारिस, हमें मालूम है उसका क्या हाल है। मोहब्बत की वजह से कह रहा है, हमारा हाल भी उससे अच्छा नहीं है, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है।
3: सरदार, अबू हमजा तशरीफ लाए हैं।

0: जानते हो ये लोग जा रहे हैं ताकि उस जासूस का पता लगाएं। हर तुम यहीं रुक जाओ। अबू हमसा ये हर्ब इब्न अब्दुल्ला अबा मोहम्मद के चाहने वालों में से, ईरान का रहने वाला, होशियार और अकलमंद है। तुम्हारा हम सफर।
1: खिदमत गुजार हूं।
2: तो तुम ईरानी हो?
0: चलिए हर्ब, हम आज ही तलाई सिपाह के साथ चलेंगे।
1: आज?
0: हाँ अभी।
1: इजाजत दे मैं दो दिन के बाद आ जाऊं?
0: नहीं इम्कान नहीं।
1: तो फिर कल जोहर की नमाज के बाद आ जाता हूँ।
0: बिल्कुल नहीं। अबा मोहम्मद का हुक्म है कि सिपाह आज निकल जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम सिपाह के साथ हो। रहा कल का सवाल, इत्मीनान रखो कि तुम्हारे चाहने वाले को कोई जरर नहीं पहुंचेगा। मैं वादा करता हूँ।
1: नहीं, मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब इमाम की सलामती की खबर मिल जाए।
0: आए आप लोग चले।
3: उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को लश्कर की सालारी दे दी गई है और हुक्म दे दिया गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जानिब फरात हरकत करे और माविया की पेश कदमी को रोक दे। अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले लश्कर में शामिल हो चुके हैं। ऐ लोगों, जान लो कि हसन इब्ने अली ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को सालारे लश्कर बनाया है। लोगों, जंग के लिए तैयार हो जाओ।
0: इतना शक तो नहीं करो
4: भाई, कूफे और दमिश्क के बाजारों में ऐसी नकली चीजें बहुत मिलेंगी।
0: ये फारसी बर्तन, इसकी शक्ल नहीं बता रही है, इसका नक्श तो देखो।
4: नहीं भाई, ये नकली है, मैं सिर्फ दो सिक्के दूंगा।
0: दो सिक्के? कल इसाक यहूदी ने 10 सिक्के लगाए थे, मैंने नहीं दिया इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है।
4: कल और आज में फर्क है, कल सुल थी, आज जंग है। क्या तुम नहीं देख रहे हो लश्कर की तैयारियां हो रही हैं?
0: भाई ये लश्कर नहीं है, ये तो ऐसी है।
4: तुमने क्या कहा, ये लश्कर नहीं है तो फिर क्या है?
0: चलो लाओ लाओ, वही दो सिक्के दे।
4: मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अपने सिक्के अपने पास रखूंगा, तुमको नहीं दूंगा।
3: लोगो, जंग के लिए तैयार हो जाओ।
0: धंधे की हालत देख रहे हो, हमें तो किसी से जंग है ना सुल। लश्कर आमादा हो चुका है, देखो।
4: मुझसे कोई मतलब नहीं है, कहते हैं काम काज छोड़ो, हमारी तलवारों के साथ हो जाओ। काम तो अच्छा चल रहा था, अगर जंग शुरू हो गई धंधा बैठ जाए, जेवरात का बाजार गिर जाएगा।

0: भाई ये खवारिज हैं, खवारिज, खवारिज के अलावा कोई और नहीं हो सकता है।
1: सुना नहीं, इब्ने अब्बास ने लश्कर जमा कर लिया है, अब किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है।
0: तुम लोग क्या कह रहे हो भाई, इतनी जल्दी लश्कर कैसे तैयार हो सकता है?
2: क्यों नहीं हो सकता, मुसलमानों के लिए सुलह की कोशिश हो रही है।

0: देखा ये हर्ब तो नहीं था?
1: रशीदी हर्ब था? हाँ। हर्ब ठहरो।
0: कहाँ जा रहे हो?
2: इब्ने अब्बास ने हुक्म दिया है कि हरावल दस्ते के साथ रहो। इताद के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मेरा दिल यहाँ है। कल तुम में से कोई एक मुझे खबर दे, समझ गया ना? जरूर खबर देना। अच्छा,
0: अल्लाह हाफिज। आओ चले, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए कि माविया की जंग के खिलाफ हमने बहुत आवाजें उठाई हैं।
1: अगर इस जंग में अबा मोहम्मद शिकस्त खा गए तो हमारा क्या वजीफा है?
0: तुम सोचते हो अबू सुफियान का बेटा हम पर रहम करेगा?
3: अगर हसन इब्ने अली जीत गए,
4: फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो और उसके साथी हमें अली का कातिल जानते हैं।
3: अली के खून का खिसास तो इब्ने मुल्जिम ने दे दिया है। ये मालूम होना चाहिए कि इस जंग में हमारा हिस्सा क्या होगा। आखिर हम किस गर्ज से तलवारें चलाएंगे और अपनी जानें देंगे?
0: इब्ने ज़ुल्जुशान, तुम कुछ नहीं कहोगे?
3: थका हुआ, सोच नहीं पाता। अब रहने दें, सोच के फिर बात करेंगे।
5: चलो भाई, चलते हैं।

0: curse. क्या नाम है तुम्हारी बेटी का?
1: जोदा.
0: जोदा. याद रखूंगा.
1: कभी कभी तुम ऐसी बात करती हो कि इंसान हैरान रह जाता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है.
0: कभी कभी ऐसे सवाल भी जहन में आ जाते हैं जिन्हें जबान पे नहीं ला सकता.

0: अब आज सुबह में कितना वक्त बाकी है?
1: मुझे नहीं मालूम। यही सवाल किए जा रहे हो।
0: ये रात तमाम होने वाली नहीं। इतनी लंबी रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आया तो ये मुसीबत कमर तोड़ देने वाली होगी और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मुझसे कैसी हिमाकत हो गई कि उनके मकसद को फौरन ना समझ सका। वाह हो मुझ पर, मैंने क्यों तुम्हें अपनी मदद के लिए ना बुलाया और इस जासूस को पकड़कर दारुल खिलाफा न ले गया। अगर मस्जिद में अबा मोहम्मद के साथ कोई हादसा पेश आए तो क्या होगा?
2: Ha ha ha ha ha!

0: इब्ने अब्बास, उठो सब एक साथ अबा मोहम्मद के पास चलें और उनसे गुजारिश करें कि कल आप मस्जिद न जाएं।
1: नहीं, वो कबूल नहीं करेंगे।
2: क्यों कबूल नहीं करेंगे? जिस वक्त रसूल खुदा को दुश्मनों ने कत्ल करने का कष्ट किया था, अली मुर्तजा को उनकी जगह पे सुला दिया।
0: इब्ने अब्बास, रसूल खुदा अपनी जान की फिक्र में नहीं थे, उनकी शरीयत दरमियान में थी। अब दोबारा वही शरायत का सामना है। इब्ने अब्बास, बस इतनी जगह दें कि हम में से कोई उनकी जगह पे मेहराब में खड़ा हो जाए।
2: जंग है,
3: दुश्मन के सिपाही इस्लाम के दरवाजे पे खड़े हैं, अगर उन्हें कोई नुकसान हो गया तो। उठो इब्ने अब्बास, वक्त हाथ से जा रहा है।
0: अभी सब्र करो, वो नमाज पढ़ रहे हैं।
4: सब कुछ ठीक है।
2: क्या हुआ?
5: आराम करो, अभी एक दो घंटा बाकी।
2: मुमकिन है कल हम सब जल्लाद के हवाले हो जाएं।
6: किसी को तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा, ये खवारिज हैं जिन्होंने हसन इब्ने अली को कत्ल किया जिस तरीके से इनके बाप को कत्ल किया था।
7: ये शख्स कहीं हमें जानता तो नहीं है?
2: ऐसी बात नहीं है, ना तुम्हारा नाम सुना है ना हमारे बारे में जानता है। हमारे एक मातहत ने उसे मामूर किया है, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा उसको उसकी उजरत दे दी जाएगी।
7: लेकिन तय तो ये था कि बाद में उसका काम तमाम कर देना है।
2: तुम हमारा मकसद नहीं समझे, उसकी उजरत उसका वही खंजर तो है जो उसके दिल में उतार दिया जाएगा।
7: अगर सच पूछो तो मैं इस काम के अंजाम से मुतमईन नहीं हूं।
4: किसके भाले पड़ गया है खुदा?
7: ये मुमकिन ही नहीं कि कोई तलवार के साथ इब्ने अब्बास, सईद, कैस, हुजर और उदय के दरमियान से गुजर जाए और हसन इब्ने अली के करीब पहुंच जाए, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर, दारुल खिलाफा में हो या जहां कहीं भी हो, जबकि अभी अली को कत्ल हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं।
2: हमारे साथ ये तय हुआ था, जिस तरीके से हम काम को बेहतर समझेंगे उस तरीके से अंजाम देंगे
7: और उसका खर्च हम देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बात जहन में रहे, हम बिल्कुल मामले से बेखबर थे और अगर कामयाब नहीं हुए तो खुद तुम लोग अमीर के सामने जवाब दे हो। इसी तरह यह भी याद रहे कि हमने कहा कि मुमकिन

0: नहीं है कि कोई तलवार के हमरा हसन इब्ने अली के करीब पहुंच जाए।
1: तलवार की किसने बात की है?
2: क्या तुमने आज तक नहीं देखा किसी सवार को तीर लगे और वो उसी वक्त हलाक हो जाए?
0: यानी तुम उन पर तीर चलाना चाहते हो, यानी मस्जिद में लोगों के दरमियान? कितने फासले से, कहां से? तीर चलाने की कोई जगह ही नहीं है, रास्ते में भी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि हसन अपने घर की पुश्त से मस्जिद में आते हैं।
1: कह रहे हैं कि वो अपने घर के पिछले दरवाजे से आते हैं।
3: सब आ जाएं।

0: अभी तक नहीं सोए?
1: नहीं,
0: कल बहुत लंबे सफर पर जाना है। इस परेशान रूह के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम जंग में हिस्सा ले पाओगे। नमाज का वक्त हो गया है, जाओ मुअज्जिन से कहो अजान दे।
2: ओह, सुबह हो गई है।

0: खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा।
1: शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जब के तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे।
0: मैं कूफे में गरीब उल वतन हूँ अम्मा, मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है।
1: कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा, इस हजार चेहरे वाले शहर क्यों आए?
0: हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे।
1: तुम्हारा नाम क्या है?
0: मुस्लिम इब्ने अकील।
1: मेरे सर पे खाक, तुम मुस्लिम सफीर फर्जंदे रसूल हो?

0: क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं?
1: सिर्फ अपने बेटे बिलाल से खौफजदा हूँ, जो कि एक नाअहल लड़का है और नीच किस्म के लोगों के साथ मैखारी करता है। रात से लेकर फजर के अज़ान तक मैखारी और अय्याशी में मसरूफ रहता है। फजर के करीब घर आता है मस्त और मदहोश हालत में। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना समझ सके।

0: क्या हुआ हबीब, क्या किया तुम लोगों ने?
1: ऐसा लग रहा है कि घरों पर मुर्दे की खाक उड़ा दी गई हो। चीख चीख कर हमारे गले थक गए। दीवार से तो आवाज आई मगर कूफियों के घरों से नहीं आई। मैं महल के सामने भी गया, कोई नहीं था। जनाब ये मुस्लिम कहाँ है इब्ने सजा?
0: नहीं जानता हबीब, मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो कोई भी नहीं था, ना महल के सामने ना मस्जिद के अंदर।
1: यानी तुम उनके साथ नहीं थे इब्ने सजा?
0: नहीं, तुम गए तो हम भी गए गली बंद करने के लिए, मगर कूफे की जुबान दराज औरतों को ना रोक सके, मजबूरन हमें रास्ता खोलना पड़ा। मुझे शर्म आई कि खाली हाथ जनाब मुस्लिम के पास जाऊं। मैं अपने सर पे खाक उड़ाने गया था मगर वो भी ना कर सका। जब आया तो कोई भी नहीं था। जनाब मुस्लिम कूफे में गरीब हैं हबीब, वो यहाँ अजनबी हैं, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे।
1: लानत हो कूफा और कूफियों पर।
2: कूफा सेब है, कूफा मनहूस है, कूफा जादू नगरी है, कूफा बुजुर्गाने दीन का कातिल है, कूफा जानवरों का शहर है।
0: खुद को संभालें हबीब, हमें जनाब मुस्लिम को ढूंढना होगा।
2: आखिर कैसे, किस मोहल्ले में, किस कबीले में? तमाम गलियों में सिपाही और फौजी फैले हुए हैं। जब तुम आए तो नहीं देखा?
0: क्या हुआ हबीब, कहाँ जा रहे हैं?
1: मुझे कूफा और कूफियों से घिन आ रही है। वहां जा रहा हूं जो इस तरह आफत सदा न हो।
2: हुसैन कूफी की राह में, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं।
0: खुदा की कसम में भी इस काफिरिस्तान से बेजार हूं। रुको ताकि निकलने का चारा कर सकें।
1: चारे कार नहीं है इब्ने सजा,
2: मुझ में रुकने की अब सकत नहीं रही। आशिक हुसैन दरिया का रुख करने जा रहा है।

0: चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो अपने अजल, मैं तुम्हारी तरह क्या गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा।
1: खुदाया।

0: कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद दी होती। बिलाल, बिलाल,
1: कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया, बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराबे हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सरार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना।
2: शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है।
1: मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो।
2: तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे, गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो। अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ।
1: कैसी बातें कर रहे सलार, मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए।
0: बिलाल, बिलाल कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे, आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो?

शहर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है, तलवार उठाए तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे।

0: कोई बात करो मुस्लिम।
1: मुझे मार दोगे या अमान दोगे?
0: क्यों पूछ रहे हो?
1: मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी।
0: हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान, असीरी की हालत में भी रजस खानी करते हैं ये लोग। इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं।
1: हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तमास करते हैं।
0: तो फिर खुदा से इल्तमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे।
1: खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूँ।
0: मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम।
1: मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो।
0: बिस्मिल्लाह।
1: ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह।
2: मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ कर दो।
0: ऐ पिसरे साद, मुजायका मत करो, ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो।
2: अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा।
0: कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुना भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह।
2: वसीयत पर अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या, फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं।
0: अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफारा अदा कर देना।

0: वसीयत सुनाओ मुस्लिम।
1: मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में

0: जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है?
1: वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर, राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी? कोई और ख्वाहिश है?
2: मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो।
1: बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरण नजस हो जाएगी।
3: जी अमीर।
2: मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदाए खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है।
1: इब्लीस तो तुम हो के नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वली मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना के गुस्से और सुए जन की वजह से।
2: खुदा की कसम तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजात और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तेहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं।

0: क्यों पानी नहीं पिया?
1: मेरे मुंह का खून माने हो गया।
0: देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो चाहता है प्यासे मरो।
1: ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरा है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या?
0: अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है?
1: गुमान नहीं है, यकीन है।
0: सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सरी और मोहक्कम कौल है, बिदत ले आया है। बिदत?
1: अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है, इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक साले मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है।
0: खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
1: हाँ, तुम वही हो कि वो बिदत दीन में लेकर

0: जाओगे जो पहले कभी ना थी, ना मर्दाना कत्ल और आजा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना।
1: तुमसे कुछ भी बई नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो?
2: मैं हूं अमीर बुकैर इब्ने उबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है।
1: बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो।
2: जी अमीर। चलो

0: मिजाजी बदबख्त हैं। कितने कमजोर दिल थे ये लोग। वाए हो कौमे मिजाज पर कि गैरत को मर्दानगी को भी बेच दिया। वाए हो मिजाज कबीले पर कि उनका नाम डूब गया। कहाँ है
1: पकड़ो इसे।
0: कहाँ है वो गैरतमंद मुसलमान जो अपने खून की गैरत का दिफा करे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कूफियों। डूब मरो तुम लोग। खुदा तुम लोगों को खत्म कर देंगे। फर्जंद रसूल को एक बदकारा के बच्चे के हाथों बेच। तुम लोग तो इस बात के हकदार हो कि खुदा कौम नूह और कौम समूद का अज़ाब तुम पर नाज़िल करे। सियाह चेहरे वाले दो जख्मियों हुसैन को तुम लोगों ने कूफे बुलाया ताकि उनके खून का सौदा कर सको। आप लोग जानते हैं इब्ने मरजाना कौन है। इब्ने मरजाना वही पलीद शख्स है जिसने बसरा में एक मोहल्ला बनवाया और इसमें फतेह खुरासान की असीर शुदा औरतों से जबरदस्ती फाशी करवाई। इब्ने मरजाना वो सफाक है जिसने औरतों के पेट के बच्चों पर भी रहम नहीं किया।
2: खामोश काफिर हरबी, अपनी गर्दन नीचे झुकाओ।
0: इतना सखी नहीं हूं कि तुम्हारा अपने कत्ल में भी साथ दूं।
3: क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं?
4: अमीर किस बारे में सोच रहे हैं?
3: मुख्तार की मौत।
4: जसारत ना हो तो अर्ज करूं कि जितना कम खून बहेगा हुकूमत की बका उतनी ही बढ़ जाएगी। खुदा गवाह है कि मैं भी मुख्तार के जिंदा रहने से बहुत नाखुश हूं, मगर उसे मारने को फिलहाल खिलाफ मसलहत समझता हूं। मुख्तार और हानी जैसों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने और उसके साथियों ने सख्त दिनों से मुकाबले की मशकें कर रखी हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उसे मारने में जल्दी मत कीजिए।
3: अय इब्ने साद, मुख्तार को या तो हमारे साथ होना है या नहीं होना है। कोई तीसरी राह तो मौजूद नहीं है ना?

0: बातचीत से मामला हल किया जा सकता है, उसे तस्लीम होने पे मजबूर कर दें।
1: अगर ना माने तो?
0: तस्लीम ना हो तो उसे मार दें।
1: मौत एक बार की है और जिंदगी भी। अगर मुख्तार के मरने से कोई वाकया रोनुमा होना है तो बेहतर है अभी रोनुमा हो जाए।
0: कोई शक नहीं कि अमीर की समझदारी हर खास आम की जबान पर है। पिछले हंगामे में अमीर की जगावत ने मुझे हैरान कर दिया था। मुझे यकीन है अमीर के आप मुख्तार से निमटने के तमाम हरबों से वाकिफ हैं। यकीनन आपने कूफा की हुकूमत के लिए कोई ना कोई फिक्र कर रखी होगी।

0: मुझे रुख्सत दो अबू इसहाक, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ।
1: बिन कामिल, दुश्मन ने सुलह का परचम लहराया हुआ है, क्या तुम नहीं देख रहे? इनका लड़ने का इरादा नहीं है।
0: अगर उनका लड़ने का इरादा ना हो तो तुम नहीं लड़ोगे?
1: किस लिए लड़ें जब दुश्मन लड़ना नहीं चाहता? तो
2: मुख्तार, अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में मत डालो। ये लश्कर जो तुम देख रहे हो उनकी तादाद इतनी है कि मैं उसे गिनने की कुदरत नहीं रखता था। यूं समझो कि जितने भी तलवारबाज थे कूफे में वह अपने साथ के लश्कर में शामिल हो गए। अगर खुदकुशी करना चाहते हो तुम लोग तो तलवार उठाओ, मेरी सलाह चाहो तो सरे तस्लीम खम कर दो और अपना और अपने साथियों का खून खरीद लो। तुम्हारी तलवार गिलाफ में रहे ये बेहतर है, या गनीमत के तौर पर उमर साद की कमर पर बांधी जाए। यकीनन कूफा की खबरें तो सुनी होंगे तुमने। मुख्तसर नाश करता हूं, कूफियों ने मुस्लिम को पीठ दिखा दी, मुस्लिम और हानी दोनों मारे गए, मिजहजियों की एक आवाज भी ना निकली। तमाम कूफी इब्ने ज़ियाद के परचम तले इस्लाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली को हक पर नहीं समझते। अब सिर्फ तुम रह गए हो और ये कलील सी तादाद, अब तुम्हारी मर्जी। तुमने एक बार जवानी में मेरी जान बचाई थी, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। अगर हथियार डाल दो तो शरीफाना वादा करता हूँ अमीर के हुजूर तुम्हारी बख्शिश करा दूंगा और तुम्हारे लिए अमान मांगूंगा।
0: मुझे इजाजत दोगे इस तन से इसका सर जुदा कर दूं अबू इसहाक? ये शख्स हमारी शराफत खरीदने यहाँ आया है।
3: इन लोगों की बात मानना सरासर खता है। इन लोगों ने जनाबे मुस्लिम को भी अमान दी थी।
4: इनका सफेद झंडा सिर्फ एक चाल है अबू इसहाक, अगर रुख्सत दे दो तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा इस मलून को। इनके पीछे कोई हुजूम नहीं, ये झूठ है कि ये लोग उमर साद के लश्कर के हमरा हैं।
5: ये कुत्ता कौन है अबू इसहाक? इसने अपने नाम और कबीले की कोई बात नहीं की।

भाइयों, जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो, तलवार पर हाथ रखना खता है। मैंने इश्क और अक्ल के खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हारने के लिए मैदान में नहीं आया हूं। मैं जीतने की फिक्र करता हूं, हार की नहीं। तो अपने गुस्से को लगाम दीजिए, अपने आप को संभालिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। आज मामला दुश्मन के हाथ में है। जहां जीत हमारी थी, हमारे साथियों ने दलीलें तराशना शुरू कर दी और जंग से परहेज करके उसे मकरूह कह दिया और इतना वक्त जाया किया कि दुश्मन को हाथ पांव चलाने का मौका मिल गया और उसने अपने साथी काफी तादाद में बना लिए और हम पर सबकत ले गए। दुश्मन

0: तो फिर अपने कीन और गम और गुस्से को अपने साथ अपने कबीलों में ले जाओ और उस दिन का इंतजार करो जिस दिन हम इस अमल का बदला दुश्मन से लेंगे और गलबे के लिए मैदान में आए ना कि शिकस्त के।
1: अबू इसहाक, तुम क्या डरना चाहते हो?
2: तो फिर अपने फिदाइयों का सर कलम कर दो।
0: कियान बिन कामिल, इतने साल जो हमने खूने दिल पिया है वो मत भूलना। ये फैसला हरगिज नहीं किया था हमने के गैर बराबर जंग में अपनी आरजुओं को अपने जज्बात के आगे कुर्बान करते।
3: इतना हौसला नहीं है मेरे पास मुख्तार, तुम लोगों का फैसला नहीं हुआ अब तक?
0: बहुत जल्दी है बिन हुरैस।
3: मेरे हजार तरह के मशगले मुख्तार, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ कि जब देखो मक्खी के छत्ते में उंगली मारूं। क्या हुआ, अपनी जान का सौदा करते हो या तस्लीम करते हो?
0: तुम और मेरी जान लोगे? हाँ,
3: मैं क्यों अपने आप को बदनाम करूं? उमर साद जैसा एक मलकुल मौत मेरे पीछे बारी लगाए खड़ा है। मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता था, सिर्फ यही।
0: मेरे साथियों की भी जान की जमानत देते हो?
3: तुम्हारे साथियों से क्या लेना देना, झगड़ा तुम्हारे साथ है। जब तुम ही इन लोगों को जोश दिलाने के लिए नहीं होगे तो ये अपने भेड़ बकरियों के पीछे चले जाएंगे।

तुम बिल्कुल बरहक़ थे इब्ने साद, मुख्तार की हैबत कुछ कम नहीं है। हक बजानिब थे कि उसकी आंखों से खौफ खाओ। ये आंखें तलवारों और बर्छियों से भरी हुई हैं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा।

0: इस शख्स को जानते हो?
1: जी सरदार, मुख्तार सखफी है।
0: शाबाश, याद रहे कि मैंने इस मर्द दिलावर सखफी को शरीफाना कौल दिया है कि इसकी जान की जमानत दो, मेरी शहरग भी काट दी जाए, मैं जबान से नहीं फिरूंगा। अपने रिजा खिलाओगे इसे, समझे? कोई भी पैगाम किसी की भी जानिब से मिले जो इसकी जान को खतरे में डाल दे तो मैं तुमसे किसास लूंगा, समझ आई?
1: जी सरदार।
0: और तुम मुख्तार, ये जान लो कि अब तक कोई भी इस काल कोठरी से जिंदा बाहर नहीं आया, लिहाजा अपना ख्याल रखना। गफलत बरतोगे तो खुद अपनी जान के जिम्मेदार होगे।

मौला गिरिया करते थे, शायद मौला को याद आया हो कि मेरे मजलूम बाबा आशूर के दिन मेरे छोटे भाई असगर को मक्तल में ले गए थे, मेरे नन्हे भाई को मक्तल में ले गए थे। पानी को तलब किया मगर कोई न था जिसने मेरे भाई को पानी पिलाया। मेरे मजलूम बाबा प्यासे इस दुनिया से उठ गए। इमाम हुसैन के लिए शेर शेर में आया है, लैतकुम फी यौमी आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी, काश तुम आशूर के दिन होते और देखते, कैफ़ अस्तस्की लितफ़लिन फ़अबौ अन यरहमूनी, कैसे मैं बच्चे के लिए पानी मांग रहा था मगर कोई न था जो मेरे असगर को पानी पिला। जब सैयद सज्जाद के पास खाना आता था तो गिरिया करते थे, शायद मक्तल में मिलता है कि जनाबे जैनब आखिरी दिन बैठ के नमाज पढ़ती थी। आपने सुना है मक्तल में जनाबे जैनब इतनी कमजोर हो गई थी कि बैठ के नमाज पढ़ती थी। जब पूछा जाता था बीबी आप क्यों बैठ के नमाज पढ़ती हैं तो फरमाती थी खाना इतना कम आता है कि बच्चों में बांट देती हूं, अब जिस्म में ताकत नहीं। शायद सैयद सज्जाद के सामने जब खाना आता होगा तो सैयद सज्जाद सोचते होंगे मेरी फूफी अम्मा, मेरी फूफी अम्मा नमाज पढ़ती थी, बैठ के नमाज पढ़ती थी। जब मदीने में कस्साब इमाम को आता हुआ देखते थे तो अपने अपने गोश्त पे कपड़ा लगा देते थे। पूछने वाले जब पूछते थे कि क्यों इस गोश्त पे कपड़ा लगाते हो, कहते थे वो ज़ैनुल आबिदीन आ रहा, वो जब गोश्त को देखता है तो गिरिया करता है। शायद शायद गोश्त के टुकड़ों को देखकर सैयद सज्जाद को अपने बाबा का पामाल लाशा नजर आता हो, अपने भाई कासिम का पामाल लाशा नजर आता हो। मिनहाल आके इमाम से कहते थे, बहुत गिरिया करते थे इमाम। मिनहाल ने एक मरतबा आके इमाम से कहा, मौला आप इतना गिरिया क्यों करते हैं, शहादत तो आपका विरसा है। कहते थे हाँ मिनहाल सही कहा, शहादत हमारा विरसा है, मगर मिनहाल बीबियों का सरबरहना होना, सकीना का बाजारों में फिरना, बीबियों के बाजुओं को रसन बस्ता होना, ये तो मीरास में नहीं है, ये तो मीरास में नहीं है। बस आज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्ने उतैबा कहते हैं कि शाम में जब ये काफिला आया है, मेरे साथ रहिएगा, इब्ने उतैबा कहते हैं कि शाम में जब ये अहले बैत का कारवान पहुंचा है, मैं मुसाफर खाने में था, शाम के एक मुसाफर खाने में था, मैंने सुना कि बाहर ऐसी खुशी की आवाज़ें आ रही हैं, मैं समझा शाम में कोई ईद होगी, इस ईद की वजह से लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। तो मैंने अपने पड़ोस वाले कमरे वाले से पूछा कि आज शाम में कोई ईद है, कहा नहीं कोई ईद नहीं है, मगर कुछ बागी आए हैं, दरबार में खड़े हुए हैं, इन्होंने यजीद की बैत का इनकार किया है, इनको मारा गया है, इनके मारने पे जश्न मनाया जा रहा है। इब्ने उतैबा कहते हैं मैं बाहर निकला कि मैं देखूं कि ये कौन बागी हैं। मैंने एक तरफ जब आगे बढ़ के देखा तो मैंने देखा नोकहाए नेजा के ऊपर कुछ कटे हुए सर हैं, मैंने सरों को देखा और सरों को देख के ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बागी है, चेहरे नूरानी थे। आगे बढ़ा तो मैंने देखा कुछ बीबियां सर बरहना खड़ी हुई हैं, कुछ बीबियां सर बरहना खड़ी हुई हैं। मैंने देखा कि

0: नहीं मालूम कि इब्ने अब्बास ने तुम्हें हमारे साथ क्यों भेजा है। शायद वो तुम जैसे पागल से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। नमाज का वक्त भी हो गया।
1: नमाज।

0: चलो वक्त हो गया है।
1: मोहम्मद
2: जी बाबा फरमाइए।
1: जो हाल तुम्हारा हुआ है हो सकता है कि इसकी वजह से तुम सब काम खराब कर दो। एहतियात करो और मस्जिद में जाने से बचो। याद रखो कि इब्ने अब्बास ने क्या कहा था, सारे काम उसी के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए।
2: ठीक है बाबा, आप मुतमईन रहिए, मैं ऐसे ही करूंगा।
3: लो पकड़ो, मैं चला।
4: सलाम अलैकुम।

0: करने आए थे तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उनकी जिरह पे मेरी निगाह पड़ी थी।
1: कहा था ना, मैंने कहा कि मुमकिन नहीं है, काफी है, बहुत हो चुका, इससे आगे ना बढ़ो। उन्हें साजिश का पता चल गया है, यकीनन उन्हें किसी ने आगाह कर दिया है।
2: मुमकिन नहीं है हमारे दरमियान कोई खयानत करे। हाँ अलबत्ता,
1: अपनी जबान को लगाम दो। ये तोहीन जो तुमने मेरी की है, इसकी शिकायत मैं अमीर से करूंगा।
0: उससे बोलो गर्दन का निशाना ले।
1: ये मुमकिन ही नहीं, इतने फासले से किसी की गर्दन का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हाँ बिल्कुल,
0: क्यों नहीं हो सकता, वो कर सकता है, मैंने खुद देखा है, वो एक माहिर तीरंदाज है।
2: वो एक जुनूनी इंसान है जो तीर कमान के अलावा कुछ नहीं जानता है।
0: जाओ बोलो गर्दन, उससे बोलो गर्दन का निशाना ले, जरा से गर्दन नहीं छुपती है।

0: ये क्या हो रहा है? अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ, जाओ अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ।
1: खवारिज, खवारिज है ये लोग, खवारिज।
0: देखो तुमने उसे, खवारिज थे ये लोग, खवारिज।
2: गारिब को मार दिया।
3: हसन इब्न अली का क्या हुआ?
2: वो मामूली से जख्मी हुए हैं। जैसे ही ज़ारिब ने तीर चलाया, हसन इब्न अली के एक महाफिज ने इसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर लोगों ने उसे तलवार के वार से कत्ल कर दिया। लगता है हसन इब्न अली की दोस्तों को पहले से इत्तला मिल गई थी। हमारे दरमियान कोई खाइन ज़रूर मौजूद है।
4: मैंने कहा था ना कि ये काम मुमकिन नहीं है, नहीं कहा था?
3: हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। हम में से हर एक को अलग अलग जगह पर छुप जाना चाहिए और एक दूसरे को भी अपने छुपने की जगह का ना बताएं। जब तक हकीकत वाजह नहीं हो जाती, सब्र से काम लें। चलो।
4: हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारी शिकायत अमीर से करूंगा।
3: अगर जिंदा रहे तो शिकायत कर लेना, कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा और उस वक्त अमीर फैसला करेंगे।
5: अच्छा सिब ने खैस,
1: शम्स
5: क्या हो गया है जो इतना चिल्ला रहे हो?
6: इब्न ज़ैद रोशन, अबा मोहम्मद की जान के दुश्मन हो गए हैं।
5: क्या?
6: मारने वाले को दरवाजे पर ही मार दिया गया।
5: अबा मोहम्मद का क्या हाल है?
6: कहते हैं कि ज्यादा जख्म नहीं आया, खतरा टल चुका है।
5: ठीक है, अब अबा मोहम्मद और उनके साथियों को पता चलेगा कि ये सिर्फ खवारिज नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। यही चीज हमारे दरमियान फितने का खात्मा करेगी।
6: लेकिन लोग ये बात नहीं मानते, बस खवारिज खवारिज की रट लगाए हुए हैं और हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नाराज हैं कि लगता है कि कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अगर हम में से कोई भी उनके हाथ लग गया तो फौरी तौर पर मार दिया जाएगा।

0: इब्ने दिलजोशन, सोचो क्या करें।
1: सैम, पता है क्या हुआ?
2: हाँ जानता हूँ, शोर ना करो। अब तुम अपने बेटी के घर जाओ और उसे बता दो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
0: यकीन नहीं करेगी।
2: यकीन करना चाहिए, उसे इत्मीनान दिलाओ तुम बाप हो। कहो कि लोग खवारिज के नाम पर फितना फैला रहे हैं, अबा मोहम्मद से कहकर लोगों को रोकें।
0: मुझे मालूम है कि फायदा नहीं है।
2: बेफायदा नहीं है, जाओ। अबा मोहम्मद के घर में कम से कम तुम्हारी जान तो महफूज है। तुम भी उसके साथ जाओ, जाओ तुम भी उसके साथ।
1: तुम क्या करोगे?
2: मेरी फिक्र ना करो, मुझे महफूज जगह मिल जाएगी।

0: कौन हो सकता है? नहीं मालूम, यकीनन इब्ने अब्बास के मामूर हैं जो हमें गिरफ्तार करने आए। हो सकता है मुआविया के जासूस हों जो वापस हो गए हों। मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कहाँ भागें, फरार का कोई रास्ता नहीं है। हमें सवारी और सफ़र का इंतज़ाम पहले से करना चाहिए था। ऐ काश उन शामी जासूसों के फरेब में ना आते और ऐसी हिमाकत ना करते। खवारिज की दुश्मनी ने हमें मजबूर किया। ठहरो, पहले पूछ तो लें, शायद कोई पड़ोसी हो, शायद शायद कोई कासिद शाम से आया हो।
1: आका क्या करूं?
0: दरवाजा खोलने से पहले पूछो कि कौन है। अगर हमारा पूछे तो कह देना घर पे नहीं है। कह दो रात ही को शहर से निकल चुके हैं। जाओ।
1: कौन है?
2: खोलो, अमर इब्ने हुरैस से काम है।
1: नहीं है, मुसाफरत पे गए हैं।
2: जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। हमसे कहो शिमरेज़िल रोशन एक जरूरी काम से आया है, उससे मिलना है।
0: शिमर यहां क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, हमसे क्या चाहता है? कह दो नहीं है।
1: नहीं है।
2: हमसे कहोगे अगर नहीं खोलोगे तो इब्ने अब्बास के साथ, हसन इब्ने अली के साथियों को लेके फिर आऊंगा।
0: कोई चारा नहीं है, खोल देना चाहिए। वो खतरनाक आदमी है, जो कहता है वो करके रहता है। दरवाजा खोल दो।
2: घर पे नहीं हूं। ऐना अहल रूबा सिफत, हसन इब्न अली को कत्ल करना चाहते हो और उसका गुनाह मेरे सर डालते हो।
0: इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमसे कोई मतलब नहीं था।
2: झूठ बोलते हो। हसन इब्न अली का इस शहर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दुश्मन नहीं। ये मेरा काम तो नहीं था, यकीन तुम लोगों का काम है। कहां है तुम्हारे हमदस्त? इसी घर में छुपा रखा है या फरार करवा दिया है?
0: मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम हो, वो इस शहर में बहुत ज्यादा है।
2: ये कैसे कह रहे हो कि मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम है? अब मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों ने पिसर हिंदा के जासूसों के साथ मिलकर एक नया बलवा खड़ा कर दिया, इस उम्मीद पे कि हमें और हसन इब्ने अली को एक साथ रास्ते से हटा दें।
0: झूठ है, झूठ है,
2: झूठ। इतना तुम डरे हो कि अपना घर भी नहीं खोल रहे हो। वल्लाह ये हक है कि तुम दोनों को इस सलवार से मार डालूं।
0: बस भी करो पिसरे जिल जोशन, बैठो, कुछ सांस ले लो। हम अपनी तमाम मुश्किलात को बैठ के हल कर सकते हैं।
2: ना मुराद, कूफे में बलवा खड़ा कर दिया है, लोग चिल्ला रहे हैं, और तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से लोग चाहते हैं कि मुझे कत्ल कर डालें, और तुम लोग कहते हो कि बैठो बात करें।
0: भूल जाएंगे शेमर, एक दो घंटे बाद जज्बात कम हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कूफे वालों को खूब पहचानते हो। इसके अलावा इब्ने अब्बास और अबा मोहम्मद के साथी शहर में बलवा नहीं होने देंगे। आओ पिसरे जिल जोशन, सिर्फ तुम खतरे में नहीं हो, हम सब इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। होजर, तुम जाओ और दूर से हालात का जायजा लो और कूफे के हालात की हमें खबर दो। हमारे लिए खाना लगा दो, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। आओ अंदर आओ।
3: मैं जानता था कि वो कबूल नहीं करेगी।
1: थोड़ा सा इंतजार करो।
3: जौदा, मेरी बेटी,
4: बताओ क्यों इस घर में कदम रखा?

0: देखा बाहर आग लगी हुई है।
1: जानती हूँ, ये वही आग है जो तुमने भड़काई है और अब अपना दामन खुद पकड़े बैठे हो।
2: हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है।
1: कोई यकीन नहीं करता।
0: तुम तो यकीन करो, तुम तो मेरी बेटी हो।
1: हाँ, उसकी बेटी जिसके बाप ने अपनी कमर बांध ली है रसूल खुदा के वसी और उनके जानशीन के कत्ल के लिए। अगर मैं हसन इब्न अली की बीवी नहीं होती तब भी तुमसे और तुम्हारे साथियों से इतनी ही नफरत करती।
2: हमारी बात सुनो बेटी, तुम्हारा बाप सच कह रहा है, इस वाकये से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
0: जौदा, मेरी बेटी,

0: जब अली मुर्तज़ा इब्ने मुलजिम की तलवार से बिस्तर मर्ग पर आ गए और मैंने रोते हुए तुम लोगों से पूछा कि सच क्या है, क्या ये तुम लोगों की साजिश थी? तुम लोगों ने अली के कत्ल के लिए इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार दी थी तो तुम दोनों ने इनकार किया और कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बाद में सब कुछ मालूम हो गया, हकीकत रोशन हो गई और मैं किसी के घर शर्मिंदा सर झुकाए रह गई कि मेरा बाप उसके बाप के खातिल का हिमायती था। और इससे अफसोसनाक ये है कि हसन इब्ने अली ने किसी से कुछ नहीं कहा, हरगिज़ मेरे बाप का नाम तक ना लिया, कभी अशद इब्ने कैस की बेटी समझकर निगाह नहीं की, बल्कि मुझ पर पहले से ज़्यादा मेहरबान हो गए, मेहरबान लहजे में मुझे पुकारा, औरों के मुकाबले में एहतराम से मेरा नाम लिया। एक दफ़ा शर्म से मैं उनके चेहरे की तरफ निगाह ना कर सकी तो मुझसे कहा किसी का गुना किसी के नाम नहीं लिखा जाता। मैं समझ गई कि क्या कह रहे हैं, यही दर्द व गम मुझे 100 बराबर कर गया। अगर चीखते चिल्लाते मेहरबान ना होते, अगर मुझे मेरे बाप के जुर्म में घर से निकाल देते, कसम खुदा की इसका बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान होता। ये कैसी सुन्नत है तुम और तुम्हारे साथियों की, हक बात नहीं सुनते, तलवार और ज़बान तेज किए हुए हो।
1: चलो चले।
2: जोदा हम जा रहे हैं, अगर इंतकाम की आग में जल के मर गए तो जान लेना कि हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है और तुमने हमें ऐसे गुनाह का मुजरिम करार दिया है कि जिससे हमारी रूहें भी बेखबर हैं।
0: रुक जाओ। जाओ। हसन इब्ने अली अपने सरदारों को उन लोगों की जानिब रवाना कर चुके हैं ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए।
1: मेरी बेटी, सच है कि तुमने बेटी होने का हक अदा कर लिया, बहुत अच्छा किया और अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा।
0: बेहतर है कि जान लो कि मैंने अबा मोहम्मद से कोई दरख्वास्त नहीं की थी, उन्होंने खुद अपनी तरफ से सरदारों को भेजा है और खुद कहलवाया है कि इस बार खवारिज का हाथ नहीं है।
3: सब जान लें कि अबा मोहम्मद सही और सालिम है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जख्म मामूली है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। लोगों सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं हसन इब्ने अली का तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं। इमाम ने फरमाया है कि इस मामले में खवारिज का कोई दखल नहीं है, वो अमान में है। इमाम ने कहा है कि अपने आंख और कान अच्छी तरह खुले रखो, माविया की साजिशों और उसके लुटेरों से होशियार रहो और आपस में इत्तेहाद रखो। अब जाएं अपने अपने घरों को और दुश्मनों की साजिशों से होशियार रहें। अब जाएं।

0: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बिल्कुल मुतमईन रहो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इब्ने अब्बास ने अबा मोहम्मद की जानिब से लोगों से कहा कि खवारिज का काम नहीं था, इस वाकये में वो बिल्कुल बेगुनाह थे।
1: लोगों ने क्या कहा?
0: लोग फौरन मुंतशिर हो गए और हर आदमी अपने अपने काम पर चला गया और फितना वहीं थम गया। देखा तुमने?
1: बेवकूफों की तरह काम करते हो। तुम्हारा इस तरह का काम करने से पहले किसी अकलमंद से मशवरा ले लिया करो। बेवकूफों,
0: कहां चल दिए पिसरे जल जोशन? आओ ताकि कुछ मशवरा करें। माजरा अभी खत्म नहीं हुआ, जंग दरपेश है और लश्कर शाम की तरफ चल पड़ा है। इब्ने अब्बास फौज के तदारुक में है, पिसर अबू सुफियान अतराफ व अकनाफ से फौज जमा कर चुका है। ये तमाम उमूर तुम्हारी नजर में मशवरे के मोहताज नहीं? क्यों नहीं?

0: और क्या कर रहे हो?
1: इंतजार कर रहा हूं सरदार।
0: किस चीज का?
1: एक सवार कूफे से आने वाला है।
0: सवार? मैं तो किसी सवार को नहीं देख रहा।
1: क्यों नहीं आएगा? कुछ देर पहले मैंने उसे दूर से आते हुए देखा है।
0: कल से जो तुम हमारे साथ चले हो, घबराए हुए दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो, परेशान हो। सारी रात मैं तुम्हें देखता रहा, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। चलते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, और आज सुबह से अतराफ चक्कर लगा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? जासूस, गारतगर, या कोई हमला होने वाला है? बल्ला, हकीकत नहीं बताई तो अभी कत्ल कर दूंगा।
1: मुझे फुर्सत दो सरदार, फुर्सत। कूफे से एक सवार आने वाला है, उसके आने के बाद तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी।
0: क्या मतलब? कूफे में क्या होने वाला है?
1: मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। सब्र से काम लो।
0: ये कैसा राज है कि तुम जानो और मैं ना जानू? मैं अबा मोहम्मद का सरदार हूं, हरावल दस्ते का सालार। सिफीन में अली ये मुर्तजा के साथ था और नहरवान में उनके साथ तलवार चलाई, सैकड़ों काफिरों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर डाला और दसियों खवारिज को जहन्नम वासिल किया। तू अजमी मुझसे कहता है कि ऐसा राज जानता है जो मुझे नहीं बताएगा? वल्लाह तू झूठ बोलता है।
1: देखो उधर देखो, अहमद है।
0: कौन अहमद?
1: अहमद बिन हारिस। हाँ ये वही है जिस सवार का मैंने तुमसे कहा था। खुदा है मदद कर।

0: अहमद क्या हुआ?
1: अबा मोहम्मद सालिम है, दुश्मन को कत्ल कर दिया गया है।
2: सरदार अब तुम सब कुछ जान सकते हो।
3: अमर क्या खबर है?
4: अबा मोहम्मद का एक खत आया है।
3: क्या लिखा है?
4: लिखा है कूफा में तुम्हारे एक जासूस की गर्दन उड़ा दी है।
3: गर्दन उड़ा दी है?
4: हाँ, लेकिन कोई अहम बात नहीं है। वो तुम्हारा जासूस नहीं था, बल्कि वो मुगैरा का जासूस है। दरअसल मुगैरा को गुस्सा आना चाहिए था, अगरचे मुगैरा को कोई गुस्सा नहीं है। सैकड़ों जासूस हैं, एक ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जासूस अपना काम करें और वक्त पर खबर दें। खबर कब पहुंचाते हैं कोई पता नहीं। क्यों मुगैरा?
5: क्या बताऊं
3: मुगैरा, तुम्हें अपने जासूसों की कुछ खबर भी है?
5: सच पूछे तो अमीर, मुझे चंद दिनों से इनकी कोई खबर नहीं।
3: ये भी नहीं जानते कि उनमें से एक की गर्दन भी उड़ा दी गई है?
5: नहीं अमीर।
3: खुदा की लानत हो तुझ पर।
4: सब्र करो अमीर, मुगैरा के जासूसों को छोड़ दो। देखो तो सही हसन इब्ने अली ने क्या लिखा है। लिखा है कि अगर रूबरू चाहते हो तो जान लो कि वो वक्त दूर नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुमसे तलवार ही से बात हो सकती है, इसलिए कि तुम आवारा औबाश बेवकूफों की तरह अक्ल व खिरत से खाली हो। अजीब खत है
3: इब्ने आस।
4: अमीर
3: तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो।
4: मैंने तो हसन इब्ने अली का खत पढ़ा है।
3: किसकी इजाजत से तूने यह खत पढ़ा है?
4: अमीर मेरा नाम अमर है, आस का बेटा हूं, तुम्हारा दोस्त और साथी हूं, और जिसने जासूस की गर्दन उड़ाई है और तुम्हें यह खत लिखा है वो अली का बेटा है।
3: इब्ने आस कभी कभी समझ नहीं पाता कि तुम्हारा क्या करूं।
6: अमीर अमीर
4: मुझसे नाराज क्यों होते हो?
3: ये कोई तुक है जो ऐसा खत तुम सबके सामने पढ़ते हो?
4: हाँ तुम सच कहते हो, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था।

0: हसन इब्ने अली की खत ने मुझे ऐसा बदहवास कर दिया था कि मैं अपने हवास खो बैठा।
1: उसने मुझे अलल एलान जंग की दावत दी है, क्यों?
0: हम कूफे से बेखबर हैं, हमें जानना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है।
1: मुगैरा, तुम और तुम्हारे जासूस।
0: हुक्म दिया जाए उस कासिद को यहां बुलाएं जो ये खत लेकर आया है, शायद उससे कुछ मालूम हो सके।
1: कहां है वो कासिद जिसने खत लाया है? यही है अमीर, उसे ले आओ। इस खत से पता चलता है कि हसन ने एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है और हामियों की बड़ी तादाद उसके साथ है, और नामुमकिन न था।
0: मुमकिन है, मुमकिन है ना भी हो।
1: मुझे डर है कि जो खबर मुझे जासूसों और बलवाइयों के जरिए दी गई है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं, और उस वक्त मैं आंख खोलूं जब हसन इब्ने अली के तरफदारों के पंजों में घिरा पाऊं। कहां से आए हो?
2: दमिश्क।
1: तुम अहले दमिश्क कूफे से कैसे नामा ला रहे हो?
3: ये वही कासिद है जिसने अमीर का खत कूफा पहुंचाया था।
4: अमीर, मैं खत पहुंचा के वापस आ रहा था कि कैस इब्न साद ने मुझसे कहा कि हसन इब्न अली का खत अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचा दूं। मैंने जवाब दिया, मुझे इस काम की इजाजत नहीं है। तो कैस ने कहा, कूफियों में से कोई इस खत को शाम पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, और अगर तुम भी कबूल नहीं करोगे तो यह खत दमिश्क तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से मैंने कबूल कर लिया, और अगर ये काम मैंने गलत किया है तो अपने अफराद को हुक्म दें कि मुझे सजा दी जाए।
1: तुम्हारा सफर का खर्च भी दिया?
4: जी अमीर।
1: कितना दिया?
4: 5 सिक्के।
1: तो फिर सिक्के की कमाई है जो तुमने नामा कबूल किया, नहीं कि नामा बेजवाब रह जाएगा। बताओ, कूफे की क्या खबर है?
4: जैसे ही कूफे में दाखिल हुआ तो देखा लोगों ने एक शख्स की गर्दन उड़ा दी थी, और कह रहे थे माविया का जासूस है जो दमिश्क से आया है।
1: ये बात मुगैरा को बताओ। और क्या खबर है?
4: पहले दिन मैंने देखा कि जमादार शहर की झाड़ू लगा रहे थे और कह रहे थे कि हसन इब्न अली ने इब्न अब्बास को फौज का सपहसालार मुकरर किया है और हुक्म दिया है कि फौज की तश्कील 9 की जाए, और लोगों से कहा है कि जिहाद के लिए तैयार हो जाएं।
1: इब्न अब्बास क्यों?
0: इस इंतखाब में ज्यादा चालाकी और होशियारी है। उबैदुल्लाह के इंतखाब में हर तरह की दुश्मनी और उसके सरदारों की नाफरमानी दामनगीर है। उबैदुल्लाह बनी हाशिम से है और अबा मोहम्मद के चचा का बेटा है, सबको उसकी सरदारी कबूल है। दूसरी बात, उबैदुल्लाह तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे दोस्ती और सुलह मुमकिन नहीं। सब जानते हैं कि तुमने उसके दोनों बेटों को शहीद किया है।
1: मैंने नहीं, बुस ने।
0: ठीक है अमीर, तुमने नहीं, बुसर ने कत्ल किया है।
1: सुना बुस, हसन इब्ने अली ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना? जी अमीर, वो भी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है। हाँ अमीर, इधर आओ। अगर इब्ने अब्बास मेरे आदमी के साथ तन बतन लड़ना चाहे तो मैं तुमको उसके साथ इंतखाब करूंगा, कैसा रहेगा?
5: ठीक है अमीर, खुदा ने यही मुकर्रर किया है कि इब्ने अब्बास की नस्ल मेरे हाथों तबाह हो। उसके दोनों बेटों को मैंने यमन में कत्ल कर डाला और अब खुद उसकी बारी आ गई है।
1: देखा, मैं बुस्र

0: हम में से कौन दमिश्क में रहेगा?
1: कोई नहीं, सब मेरे साथ चलेंगे।
0: जी
2: अमीर, क्या मेरा भी आपके साथ चलना जरूरी है?
1: बिल्कुल मुगैरा, मैं तुम्हारे मशवरे से महरूम रहना नहीं चाहता। अम्र,

0: क्या कह रहे हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो, ना कुछ देखता है और ना ही कुछ सुनता है। देखा, खून की बू ने उसे मस्त कर दिया है, कत्ल गारत का ख्वाब देखता है। चलो बताओ अम्र।
1: हसन इब्ने अली ने तुम्हें इस खत के साथ मुकम्मल जंग के लिए बुलाया है, समझे?
0: ठीक है, हम भी इस्तकबाल करेंगे।
2: ये वही चीज है जो कि वो चाहता है।